0: The Shameless
1: 2024.
0: One of the most cherished films to come out of the Indian landscape, which beautifully showcased a homosexual romance, is Anasuya Sen Gupta star The Shameless.
2: कुछ नाम वाम है तेरा
3: देवी का यहाँ की औरतें बाहर सिगरेट नहीं पीते
2: यहाँ की औरतें बहुत कुछ नहीं करते जो मैं करती हूँ
4: और तू अपने से दुगनी उम्र के
0: Yes, with her powerful performance in this Bulgarian director Konstantin Bojanov's film, Anasuya was even honored with the Best Actress Award in the Uncertain Regard section.
2: दोनों के लिए
5: अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना एक-एक का गला काट के फेंक दोगे
0: For the adverse, The Shameless revolved around Anasuya's character Renuka, a sex worker who reaches a brothel in Delhi in an uncertain circumstance and falls in love with another woman.
6: यार, मैंने मुझसे कभी सुना नहीं मैंने ये।
5: हाँ पर अब बोल रही हूँ।
0: The Shameless also features Omara, Arushika Dey and Rohit Kokake in pivotal roles.
2: क्या किया इसके साथ? अब मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊँगी।
0: बधाई दो 2022.
7: नाम
8: समन
7: टाइटल
8: सिंह
7: जेंडर
8: आपको क्या लगता है
7: अब फीमेल
9: चार साल से जिद पकड़े बैठे हैं इसी लड़की से शादी करूंगा
8: अरे नहीं करनी मुझे शादी वादी
10: 31 की हो गई है तेरा भविष्य क्या है गणित की टीचर बन जाती साइंस पढ़ाती पीटी टीचर बन गई उसकी तो ट्यूशन भी नहीं होती है
0: One of the best films to have portrayed queer people in cinema was the 2022 film बधाई दो
11: सेम कास्ट
12: मेरे शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है
11: हमें पता है
12: क्या पता है
11: पर कोई टेंशन नहीं है हम समझते हैं आपकी रक्षा भी कर लेंगे
0: द फिल्म टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ गे मैन शार्दुल प्लेड बाय राजकुमार राव
13: होम्योपैथी में भी दवा नहीं है इस बीमारी की
11: क्या सब क्या क्या बोल कर रहे हो आप
0: And a lesbian woman Sumi, played by Bhumi Pernekar, who gets into a marriage of convenience and the struggle the protagonists face.
14: मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। लगा था दीदी समझेगी, पर अभी नीस के पास भी नहीं जान देती।
8: तूने बताया है क्यों?
14: सोचा था फैमिली है ना, समझ जाएगा।
8: सनी, कोई नहीं समझता यार। हम डिफरेंट है ना? और समझाना भी क्यों है? हमारे लाइफ का हिस्सा है, पूरी लाइफ थोड़ी ना।
0: The film received a lot of love from cine fans. Bhumi and Raj's layered yet power-packed performances got a thumbs up from the critics too.
8: Hello.
11: मैं हमने बोल दिया। सबको बता दिया।

0: आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई।
1: शुभ मंगल ज्यादा सावधान 2020।
2: सुप्रीम कोर्ट जिन पटाखों पे बहस कर रही है ना, वो अपने आंगन में फूट रहे हैं।
3: जो तुम्हारे कमरे में गंदी गंदी सीढ़ियां होती थी ना, अमन वही देखा करता था। उन सीढ़ियों में लड़कियां होती थी,
4: सिर्फ लड़कियां होती थी,
3: नहीं लड़के भी होते थे उसमें, लड़के भी।
1: आयुष्मान खुराना एंड जितेंद्र कुमार स्टार और शुभ मंगल ज्यादा सावधान वाज द फर्स्ट हिंदी फिल्म टू पोर्ट्रे अ गे रोमांस बिटवीन टू लीडिंग मेन।
5: डॉल्बी बीमारी लगती
6: और इस बीमारी का कोनो इलाज नहीं।
7: हमने तुम्हारे लिए कुसुम को चुना है,
2: लड़की है।
8: तुझे क्या लगता है तेरे सातवें फेरे पर पिक्चर फ्रीज हो जाएगी, दी एंड, हैप्पी एंडिंग? ना बेटा, सुहागरात से तेरा रोडी शुरू होगा। कर पाएगा टास्क, बनेगा रोडी?
2: बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम।
3: सुनो ना जी, हमें पटरी पे धकेल के तुम मदर इंडिया बनना चाह रही हो?
2: हाँ, बनूंगी मैं मदर इंडिया। मैं माँ हूँ, माँ के पास दिल होता है।
3: हाँ, बाप तो बैटरी से चलते।
8: मेरा बाप ना लोहार है, तेरे पापा तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। बोल दूंगा तू मुझसे प्यार करता है।
3: मैं गलत फहमी हुई है।
0: पापा क्या गलत फहमी?
9: कार्तिक को जब मैंने पहली बार देखा था ना, मम्मी
0: पुतलियां आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी।
1: While the attempt was to break the mold and redefine what the macho Bollywood hero is, the script and the treatment of the subject left fans disappointed.
3: तुमने पुरुष से प्यार किया, लड़के से
0: क्या फर्क पड़ता है?
8: जो प्यार इनके दिमाग में फिट नहीं बैठता ना, उसको दबा देते हैं। पर ये हमारी लड़ाई है और एक आधी हैप्पी एंडिंग तो अपने भी बनती है।
1: However, the film songs were a big hit.

0: अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था।
1: 3 साल से मैं अपने बिजनेस के लिए वो बचा रही थी।
2: शकुन बत्रा'स कपूर एंड सन्स पोस्टेड अ स्टेलर कास्ट इंक्लूडिंग ऋषि कपूर, रजत कपूर, रत्ना पाठक सिंह, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड फावद खान।
3: तुम किसको जानते हो? तुम दोनों एक दूसरे कैसे जानते हो?
4: लड़की ब्यूटीफुल देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोल तू बंद मेरी कहो।
3: हम अर्जुन
5: टिया
3: हाय,
5: तुम इतने परेशान क्यों हो अर्जुन?
3: मत पूछो, मेरा दिल तब बकवास जा रहा है ना।
5: गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई?
3: भाई से।
5: भाई से?
3: भाई से नहीं, भाई से।
2: The film has some really intense scenes that portray the Desi family perfectly. Amidst all the fighting and drama that takes place in the film, Fawad's character comes out gay in an intense scene, and his coming out of the closet was presented with the perfect amount of compassion and empathy.
3: You're funny.
5: You're hot.

0: की होना इतना फेल किया, वैसे भी कुछ होता रहा नहीं।
1: ऐसे ना बोले यार, जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
2: केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा।
3: वो मेरा कीटो चल रहा है, कुछ तो रैम करो।
4: निकिता से बात की?
3: मैं ब्याह नहीं करवाना, मैं देख लूंगा अपने लड़की, पहले मुझे बनना है कुछ।
4: इतना बड़ा सांड बन गया, होर की बनना है तो?
5: Another Ayushman Khurrana film that was out of the ordinary was the 2021 film Chandigarh Khare Aashiqui, a daring attempt at showing a love story between a cross-functional athlete and a transwoman played beautifully by Vani Kapoor.
6: ये था थी दिमाग बदल गया मेरा, वो तो धोखा देता है मेनू।
2: Out, एक सही था यार, normal से भी।
0: किया कहाँ से आपने?
3: पहन के कहाँ, मतलब पागल है तू, जहाँ से सब करते हैं वहाँ से किया मैंने। साले वर्जिन ही मरोगे दोनों।

0: बिल्कुल द जेंडर बेंडिंग रोमांस ड्रामा मैनेज्ड टू रिसीव पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम द ऑडियंस एंड द क्रिटिक्स अलाइक
1: ओए लिविन में रह ले
2: मेरा टब्बर मेरे पीछे पे आया तेरे नाल ब्याह कराना तो एक बार मना कर दे सब खत्म
3: पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया तुमने मुझे रिजेक्ट किया

0: सर मैं ये नहीं जानना चाहता कि उस रात क्या हुआ था। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस ऑफ कोर्स, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि उन लोगों को ऐसा जबरदस्ती आपके घर में घुसने का हक नहीं था।
1: मेरे खिलाफ साजिश थी। जनवरी लास्ट में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे धमकी दी थी कि वो ज्यादा दिन तक मुझे चेयरमैन के पद पर नहीं टिकने देगा, और एक हफ्ते के बाद यह घटना घट गई।
0: अब गए इसलिए
2: The film released in 2016 and received a standing ovation at its world premiere at the Busan Film Festival and won lead actor Manoj Bajpayee a Best Actor trophy as well.
3: आपको कमरा खाली कर रहा है, बैचलर आदमी नहीं चाहिए।
4: तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है?
3: अरे होता होगा।
0: वजह क्या लगा?
1: तुम लोग ये शब्द के पीछे क्यों पड़े जाते हो?
2: The intense Hansal Mehta film set in the city of Aligarh is based on the true story of Professor Mr. Ramachandra Siras at the Aligarh Muslim University, who was suspended due to his sexual orientation. He is then contacted by a journalist who is sympathetic to him and his case is taken up in court. The court rules in his favor and Siras' suspension is revoked. But before he can return to work, he is found dead.
1: An outsider. Urdu bolne wale shahar mein Marathi sikhata hoon. शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूँ।

0: इसमें होए कभी चूल्हा टाइप।
1: पंकज से शादी, मुसलमान से शादी, बनिहाल.com से शादी, सबका दिमाग एक ही डायरेक्शन में क्यों चलता है?
2: And then there was सोनम कपूर, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
3: डैडी आपको क्या लगता है उसका चक्कर इस लड़के के साथ में?
0: तेरे से ये उम्मीद नहीं थी।
1: पर मेरी उम्मीद पे खरे तो आप भी नहीं उतरे डैडी।
2: The tale of a woman hesitant to disclose her sexual orientation to her family. In spite of them pressurizing her to get married, the film was welcomed by the audience.
4: तुम पहले बंदे हो जिसे मैंने अपना सच बताया।

0: But even in times when society was not as accepting of interesting content in cinema, there was director Oney's My Brother Nikhil. The film rolled in theatres in 2005 and dealt with the taboo topic HIV and homosexuality ahead of its own time.
1: Any unsafe sexual practice? I mean, prostitutes?
2: What's wrong, doctor? आप मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
1: देखो, तुम मुझे जो भी बताओगे मुझ तक ही रहेगा. तुम फ्रीली बात कर सकते हो निखिल, ठीक से सोचो.
2: नो डॉक्टर, एक्चुअली एक आध बार वो भी जिन्हें मैं जानता था, यू नो, गर्लफ्रेंड्स. पर प्रॉब्लम क्या है?
0: My Brother Nikhil is the touching story of a successful swimmer and his fear and frustration on being diagnosed with HIV.
3: तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मना कर दो. मैं हूं तुम्हारे साथ. बी फर्म. कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है. क्या बात है निखिल?
0: एंटरटेनमेंट ब्यूरो, इंडिया टुडे.
2: Love you a lot, princess.
3: Love you too, bye.

0: In these 12 years, Linear India has transformed into Digital India, revolutionizing how Indians transact. Unified Payment Interface, or UPI, the world's most advanced digital payment system, now covers every corner of India. In December 2025 alone, UPI processed a record 21.63 billion transactions worth 27.97 trillion rupees. In financial year 2025, UPI captured 83.7% of all digital transactions, processing 261 trillion rupees. Bihari started to use UPI to receive payment at his tea stall in Patna when the COVID pandemic hit the world. Social distancing forced people to skip cash and opt more and more for digital cashless payment.
1: No digital koi deta nahi tha aur hum log le hi nahi pate the. Wo to khudra ka jhamela us garib hi tha. अब तो हो गया कि कम से कम डिजिटल चल रहा है, तो ये तो है कि किसी के पास पैकेट में पैसा रहे ना रहे, मोबाइल से काम हो जा रहा है। कोरोना के बाद समझिए कि पैसा आदमी यूज करना ही छोड़ दिया है, मतलब मोबाइल से ही ज्यादा यूज करता है।
2: आज आपको कोई अगर नोट दे देता है 10 रुपए की चाय पिया और अगर 50-100 रुपए का नोट दिया तो खुल्ला होता है आप लोग के?
1: नहीं, बहुत दिक्कत होता है खुल्ला के लिए, तो समझिए कि अंतिम में हम लोग को पैसा छोड़ना पड़ जाता है।
2: ये हालत हो गया है
1: अभी।
2: एक चीज और बताइए, जैसे बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी या है कि नहीं, आप लोग का पेमेंट होता है अटक जाता है? ऐसा तो नहीं हो जाता कि अगर पेमेंट हुआ फंस गया, नेट नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसा तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि जब भी होता है तो अपना, इसीलिए मैंने दो बॉक्स रख लिए हैं। कम से कम दो बॉक्स में ये है अंदाजा कि आपका जैसे कि पेमेंट आ गया तो वो बोलेगा, अगर नहीं आया तो बोलेगा ही नहीं।
2: I've just had my cup of tea and now I need to make payment for this. Bihari ji, दो कप चाय का कितना हो गया?
1: दो कप चाय का 24 रुपए हो गए।
2: चलिए मैं, let me now make this payment through my digital platform here. चलिए, तो मैंने 24 रुपए का पेमेंट कर दिया डिजिटल से, मिल गया आपको?
1: बिल्कुल मिल गया सर।
2: हाँ, ये आपको लगता है बड़ा इजी है, बड़ा आसान है ये तरीका पेमेंट का?
1: हाँ, ये बहुत इजी है, और दूसरी बात के टेंशन नहीं रहता खुदरा का, नहीं तो 100 रुपया का नोट अगर आदमी दे देता है तो 10 दुकान हमको भजाने में देरी होता है।
2: एक कप चाय 12 रुपया का, 24 रुपया का, फिर खुदरे में दिक्कत होता है।
1: 24 रुपया में तो खास करके ज्यादा दिक्कत हो जाती है।
2: There you see, I've just had a cup of tea here and 24 rupees that I've paid for 2 cups of tea, and I've made this payment through this digital platform. And Bihari, this tea seller, is also happy with the fact that he doesn't have to worry about giving change if somebody gives a currency here, and that is why we are seeing in India, especially in states like Bihar, in urban and rural parts also, digital penetration has increased extensively.
0: From Patna to Jaipur, life works seamlessly on UPI.
3: In the new digitized India, one thing has grown in leaps and bounds. It is the UPI payment, or payments made online. Millions of transactions get made through the use of phones which people carry, and make payments for traveling in buses, for paying to vendors. And we are right now in a local bus on an arterial route in Jaipur, and you can see all of these people who are traveling. In fact, most of the people carry phones with them and can make use of online transactions to carry the payment for which they want to make for the travel that they do. Kya naam hai aapka?
4: Rajkumar.
3: राजकुमार, ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप?
4: जी।
3: रोज कितने पेमेंट्स करते होगे ऑनलाइन?
4: जी ज्यादा नहीं, 100-200-500
3: हो जाती है, 100-200-500 की। और आप ये फोन दिखा रहे थे, आपने आज की पेमेंट से क्या आपकी?
4: जी ये जो है किया है अभी, ऑनलाइन लिए हैं पेमेंट।
3: और बस में ट्रैवल करने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करते?
4: नहीं नहीं, बस में तो कैश देते हैं।
3: वैसे करते हो आप ऑनलाइन?
4: जी।
3: वेल, इन द बस दैट वी आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, दिस इज अ लोकल बस व्हिच फ्लाइज ऑन द टोंक रोड इन जयपुर सिटी, एंड आई ऑल्सो डू हैव द कंडक्टर विद मी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप लोग एक्सेप्ट करते हैं बस में?
5: हाँ, करते हैं।
3: और कितनी, मतलब जो आपकी टोटल ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी कितनी परसेंटेज ऑनलाइन होती होगी?
5: ऑनलाइन कोई फिक्स नहीं है, कभी कितना आ जाता है, कभी 200 आ जाता है, कभी 300 आ जाता है, कभी 500 आ जाता है।
3: पर वो ऑप्शन आप लोग देते हैं पैसेंजर्स को कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर सके?
5: कर सकते हैं।
3: द ड्राइवर इज राइट नाउ ऑल्सो ओवर हियर। क्या नाम है आपका सर?
6: मोहनेंद्र सिंह।
3: आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं?
6: हाँ।
3: और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो ऐसे कितने पैसेंजर्स होते होंगे जो ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे?
6: ऐसे एक चक्कर लगाते हैं उसमें कम से कम 10-12 लोग तो आते हैं।
3: तो आपको लगता है जब अगर मान लीजिए छुट्टे पैसे नहीं हो वो कन्वीनियंट रहता है ऑनलाइन पेमेंट करना?
6: करवा लेते हैं, करते हैं।
3: तो जो फेयर है वो 10-15 रुपए का ही होता है?
5: 10-15-20
3: ऑनलाइन करते हैं पेमेंट तो। Well, so this is one thing which is very convenient, because if someone is not carrying a short change or cash with them, then online payment option is one option which is readily available and is made use of. And in fact, this is one mode of payment which has grown in leaps and bounds in the last 12 years during the Narendra Modi government's tenure at the center.
0: The local shop selling essential grocery and tea also thrives on cashless payment.
3: This is a tea shop where every day hundreds of people come to buy tea, various products from this shop. The shop owner is with me right now. Kya naam hai aapka?
7: Babulal Saini.
3: Babulal ji, ye bataye ki kitne log aate honge rozana jo online ke zariye UPI ke zariye payment karte chahiye?
7: 300 aate hain, 300 ke lagbhag aate hain.
3: वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, फायदे की चीज है? मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह आपने QR कोड।
7: ऑनलाइन से तो ये फायदा है, भीड़ नहीं लगती फटाफट, UPI से पैसे हो जाता है, खुले देने लेने के झंझट खत्म हो जाती है।
8: एक चीज तो ये हो जाती है कि अपना एक तो जो जेब कतरे होते थे पहले, उनका काम थोड़ा कम हो गया है, और थोड़ा सा सेफली पेमेंट हो जाता है। हाँ, अटक भी जाते हैं कई बार।
0: फार फ्रॉम द बसलिंग सिटी इन स्मॉल टाउन मुजफ्फरपुर इन बिहार, vegetable vendors to small businesses all run on UPI.
9: 100 रुपया का सब्जी लेते हैं तो मोबाइल से मार के अपना चले जाते हैं,
10: फायदा हुआ है।
11: पहले पैसा लेके उधार पर ले जाता, पैसा वही पर मारता है मोबाइल से।
0: चंदौली इन उत्तर प्रदेश, नियरली ऑल वेंडर्स इन दिस विलेज एक्सेप्ट UPI पेमेंट।
12: 1.5 साल से UPI यूज कर रहे हैं, इससे ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है तो बहुत आसान हो गया है, इससे हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है।
13: पेमेंट लेने में दिक्कत नहीं होती?
12: नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती।
13: ग्राहकों को भी सुविधा होती है?
12: बहुत ज्यादा, घर से निकल रहे मोबाइल लेकर के हो जा रहा है उनका काम, जो भी लेना चाहते हैं वो सब ले देकर चले जाते हैं।
0: More than 400 kilometers from Narayanpur in Madhya Pradesh's Sioni, digital payment is a normal and accepted form of transaction for daily needs.
14: 4,35 rupees
15: phone paper प्राप्त। UPI आने से हम लोगों को चिल्लर की समस्या खत्म हो गई, और पैसे बार बार घड़े आना पड़ता था, तो वो घड़े आने का भी मामला खत्म हो गया है। लोग अब अगर 11 रुपए भी देते तो हमसे 11 रुपए भी ले लेते हैं। पहले होता यह था कि भाई 10 रुपए देते थे, अब हम उनसे 11 रुपए भी ले लेते हैं, और पूरा पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। इससे ये फायदा है, लगभग 60% हमारा UPI से होता है, 40% हमारा कैश होता है।
0: From metro cities to remote villages, UPI has become the backbone of India's digital economy. It's now expanding to 20 nations worldwide.

0: This train has also met the real-life need of the valley. Perishable goods like fruits and vegetables today don't have to wait in long queues of trucks to reach the rest of India. Like this cherry farmer, from the farm, they reach the table via train.
1: बहुत इसमें हम बहुत मशहूर है मरकजी गवर्नमेंट और रेलवे हुकाम के कि उन्होंने ट्रेन के यहाँ फैसिलिटी हमें मुहैया की है और हमारी शहरी इस साल भी जा रही है बाई ट्रेन चूंकि श्रीनगर से अभी डायरेक्ट बम्बई नहीं जाए कोई ट्रेन हम यहाँ से कटरा भेज रहे हैं कटरा से बाई ट्रेन नहीं जाता है हमारा बम्बई माल और सेफ भी पहुंच जाता है जल्द भी पहुंच जाता है और सस्ते रेट में भी पहुंच जाता है
2: डेकेड से ये यहाँ के लोगों का ख्वाब था चाहे पैसेंजर एस्पेक्ट हो लेकिन कमर्शियल क्योंकि यहाँ की ज्यादातर चीजें सेब चेरी एप्रिकॉट ये ऐसे फल हैं जो ज्यादा सड़क में फंस गए तो पूरे साल की मेहनत एक ग्रोवर की बर्बाद हो जाती है तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है सरकार की कश्मीर को लेके वो है ट्रेन सर्विस जो कि कनेक्ट किया है अब कश्मीर को पूरे देश से
0: द दल्ली रजहरा रावघाट जगदालपुर रेल प्रोजेक्ट is one of Chhattisgarh's most important and long-awaited railway projects. Sanctioned in 1995, the 235-kilometer rail corridor was envisioned to connect the remote Bastar region with the rest of the state and the national railway network. Three decades later, while work is going on, it has become partially operational.
3: प्रोजेक्ट 85% कंप्लीट हो गया है खाली एक लास्ट सेक्शन है 17 किलोमीटर का केवटी से रावघाट ये इस पे काम चल रहा है और वो भी इस साल कंप्लीट हो जाएगा इसके अलावा रावघाट से जगदलपुर के लिए एक नया प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जिसमें अभी लैंड एक्विजिशन प्रोग्रेस में है
0: द प्रोजेक्ट इज क्रूशियल नॉट ओनली फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयरन ओर फ्रॉम द रावघाट माइंस बट ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग पैसेंजर कनेक्टिविटी For the first time, districts like Kanker, Narayanpur and Bastar are being linked through a modern rail network, bringing better access to trade, education, healthcare and tourism.
4: Ravghat Railway Project. This entire project is 235 kilometer of railway line. Instead of waiting for the entire project to be completed, the operations are extended after every stretch of 15 kilometer is completed and cleared for use for passengers. This phased approach allows communities, industries and logistics to benefit from its connectivity much earlier than the anticipated time.
0: Udaan has served over 1 crore passengers. Inaugurating 425 new routes and 58 airports in its first 5 years.
5: 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और 25 दिसंबर से इस एयरपोर्ट से फ्लाइटों की उड़ान शुरू कर दी गई लगभग 20,000 करोड़ की लागत से पहले चरण में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया और अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है इस एयरपोर्ट के बन जाने से कोकण मुंबई और पुणे के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं
0: द ऑपरेशनल नवी मुंबई एयरपोर्ट हैज सिग्निफिकेंटली ईज्ड मुंबईज एयर ट्रैफिक कंजेशन जनरेटेड लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्टेड रीजनल रियल एस्टेट ग्रोथ किशनगढ़ एयरपोर्ट हैज बूस्टेड अजमेर्स टूरिज्म Simplified pilgrimage to Pushkar and the Dargah and accelerated the region's massive marble trade.
6: Kishangarh khud ek vishv prasiddh marble mandi hai जहाँ पे व्यापार और रोजगार दोनों ही बहुत अच्छे स्तर पे कार्य कर रहे हैं और पूर्व में उनके पास साधन इतने नहीं हुआ करते थे लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद अब जो साधन है और व्यापार और रोजगार वो उसकी जो वृद्धि है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है
7: किशनगढ़ के एयरपोर्ट बनने से आम नागरिकों को जो टूरिस्ट आता था अजमेर के अंदर चाहे पुष्कर हो चाहे मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे दरगाह हो सबके जायरीन सब यात्री आगे से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं
8: जो एयरपोर्ट की सौगात है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इसलिए हो जाती है न सिर्फ इससे एक यातायात सुगम हुआ है जबकि पूरे पर्यटन के अंदर इसको बढ़ावा मिला है टूरिज्म को बढ़ावा मिला अजमेर आर्थिक रूप से इससे और अधिक सशक्त हुआ है
0: मोपा एयरपोर्ट हैज ड्रास्टिकली बूस्टेड गोवास टूरिज्म Enhanced international cargo logistics and catalyzed major commercial real estate growth in North Goa.
9: This airport is pretty nice. Way jitter than the W one right now.
10: The earlier airport was very far away, and this is the best looking which we have in Goa.
0: Noida International Airport, coming up in Jewar of Uttar Pradesh, will dramatically decongest Delhi's airspace, create massive employment, drive global logistics, and transform Western Uttar Pradesh's real estate. This Udaan, with 90 airports in 12 years, prepares to grow into a network of 220 airports mapping the country. Make in India and Atmanirbhar Bharat have transformed India into a manufacturing hub.

0: Defense exports skyrocketed from 686 crore rupees in 2014 to 23,622 crore rupees in financial year 2025, a 34-fold increase. Annual defense production reached a record 1,50,590 crore in financial year 2025, up 18% from the previous year. India now has 1.57 lakh recognized startups and 125 unicorns valued at $366 billion. The drone sector has witnessed a 34.4% surge, with 526 drone startups raising $745 million.
1: हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं।
0: बी आर्म मेडिकल टेक्नोलॉजीज, अ तमिलनाडु बेस्ड हेल्थ केयर D2C startup that focuses on developing innovative and accessible healthcare and wellness consumer products. Women are its main focus.
2: We expanded our product portfolio from puberty to menopause, supporting womanhood through every stage. So to do all this, we actually had the initial support and initial support from central government through a nationalized bank, actually through the Women Entrepreneurship Scheme. One of the nationalized bank's manager called us saying that she wants to give us a loan. And that's how we got the loan through central government scheme and got our machineries and kickstarted our segment into the women's wellness space.
0: Founded with a vision of making healthcare products more accessible and conversation friendly, BeArm has been steadily growing its presence through digital first healthcare solutions and awareness driven initiatives. Lisa Bharadwaj from Ludhiana in Punjab was looking for investment after she completed her studies to start her own business.
3: जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन होता था, एवरीबडी वॉज लाइक कि आपके पास कोलेट्रल नहीं है, गोल्ड नहीं है, लैंड नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। देन आई गॉट टू नो सम गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग सिस्टम ने मुझे सपोर्ट किया एंड आई गॉट टू नो कि यहाँ पे कोलेट्रल फ्री फंडिंग भी मिल जाती है अगर आप स्टार्टअप करने के लिए आपका विजन अच्छा है, आप गोल ओरिएंटेड हो।
0: स्टार्टअप्स इन दिस रीजन हैव गवर्नमेंट स्कीम्स टू बैक देम अप।
4: गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं स्टार्टअप को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट वाली स्कीम्स हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो इस साल में जो DPIIT के अंडर जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उसको उन्होंने जो फंडिंग को 20 करोड़ रुपए तक का कर दिया, तो उससे जो स्टार्टअप को काफ़ी सपोर्ट मिलती है।
5: हम पिछले 15 साल से इस बिजनेस में हैं एंड पहले बहुत मुश्किल होती थी डिजिटलाइजेशन से पहले की फंडिंग को उठाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वी रियली प्रेज बिजनेसमैन बहुत ईज में है आज की डेट में काम करने के लिए, कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन होने के बाद आप फंडिंग एक सेकंड्स में उठा सकते हैं मार्केट से।
0: आनंद इन गुजरात इज नोन फॉर द मिल्क रेवोल्यूशन। इट इज द सिटी फ्रॉम वेयर अ स्टार्टअप लेड बाय श्वेता प्रजापति इज ड्रीमिंग बिग। द स्टार्टअप सर्बोटेक इज अ न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी। Using brain-computer interface and emotionally intelligent AI to improve focus, emotional balance, and cognitive strength, it has developed Neurome. It pairs a wearable brain band with a mobile app to deliver real-time brain insights and gamified mental training.
6: Government is very much actively working on a startup, or har ek हेल्प करते हैं, स्पेशली फाइनेंस. सो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट गुजरात मोदी सरकार की ग्रांट्स है जो खुद मैंने भी लिए है, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है गुजरात के जिन्होंने लिया हुए है. जैसे मैंने स्टार्ट किया था SSIP जो स्टूडेंट स्टार्टअप को मिलता है, जो 2.5 से शुरू होती है और उसके अप टू 1 CR 2 CR तक ग्रांट्स अवेलेबल है फॉर द स्टार्टअप.
0: सर्वजीत सिंह वर्क co-founded Finvasia with his brother Tejinder Singh Virk in 2009. Then he moved back North America to Punjab. Today, Finvasia Group deals with artificial intelligence to make it accessible to Indians with technology-driven solutions.
7: I certainly feel that the incubation system, which is more prominent in a good leading universities, the STPI ecosystem, all that really supports the people who are willing to bet on their time, but probably do not have money to innovate. And this is where I feel that the government support always mitigates some level of risk for the first generation entrepreneurs, even like us or from a startups who are in tier 2, tier 3 city.
0: Isha Jhawar is a foodie. So she developed food with authentic flavors for all who live on their own away from home. Her startup, Repeat Good, based out of Raipur, is a beneficiary of the government's Make in India scheme.
8: 12 साल में देश का बहुत विकास हुआ है. Make in India को बहुत प्रमोट किया गया है. तो हम सबको भी एक सोच आई है कि हम बाहर की चीजें अवॉइड करें, खुद जो हमें जरूरत है वो इंडिया में बनाएं और उसे विदेश तक लेके जाएं. तो ये सोच अब हर घर तक पहुंची है, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है. ऐसी ही सोच ने हमें भी, मुझे भी प्रेरणा दी है कि मैं अपना कुछ बनाऊं, मैं अपने प्रोडक्ट बनाऊं, और अब ये पूरे देश में तो जा ही रहे हैं, इन्हें विदेश तक भी पहुंचा.
0: यंग इंडिया इज बोल्डली स्ट्राइविंग अहेड to make the country Atmanirbhar.

0: The government's poverty-centric agenda has lifted 250 million people out of poverty in 10 years.
1: देश की हर उस बहन को जिसको धुएं से मुक्ति मिली है बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has provided 10.33 crore LPG connections with 32.94 crore active domestic LPG consumers nationwide. Direct benefit transfer has streamlined welfare delivery, transferring over 44 lakh crore directly to beneficiaries' accounts as of May 2025. Saving the exchequer 3.48 lakh crore rupees by eliminating middlemen.
2: मैं जिस घर में पैदा हुआ बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे, और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं।
0: The system removed 4.23 crore fake LPG connections. This has brought smiles in kitchens across the country. Free LPG connection in BPL families in Saharsa, Bihar is nothing short of bounty for the lady of the house.
3: पहले जैसे कि चूल्हा पे खाना बनाते थे, बच्चा को भी टिफिन नहीं दे सकते थे, जब से ही जो उजाला गैस हमको मिला है तब से बहुत ही सुविधा है, जो मैं कि बच्चा सबको भी स्कूल भेज देते हैं, हम भी ड्यूटी पे चले जाते हैं।
4: ज्यादा पड़ता था धुआं से, बहुत परेशानी होती थी, लकड़ी भी तो टाइम से उतना नहीं हो पाता था। हम लोग को बहुत राहत मिला है जब से उजाला गैस मिला है, टाइम से बच्चे को खाना दे पाते हैं, नहीं तो पहले लकड़ी पे बनाना पड़ता था, चुन चुन के लाना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था।
0: चेतन ठाकुर लिव्स इन अ सिंपल मड हाउस इन सुंदरपुरा विलेज इन गुजरात्स खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। द ब्लू फ्लेम ऑफ एन एलपीजी सिलेंडर इज द बिगेस्ट रिलीफ for his family of 11.
5: પહેલા કે લાકડા સરગંધ બહુ તકલીફ પડતી હતી, ચોમાં બધા લાકડા પલળી જાય એટલે કસાય કોમમાં ના આવે, એટલે પછી ગેસનું ફોર્મ ભરાઈને આપણે ગેસ કનેક્શન લીધું એટલે થોડી રાહત મળી।
0: પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના લોન્ચ્ડ ઇન 2016 પ્રોવાઇડ્સ ક્લીન કુકિંગ ફ્યુલ ટુ પૂઅર હાઉસહોલ્ડ્સ, transforming the lives of women in Golagudem village of Khammam district in Andhra Pradesh. It has reduced their dependence on firewood and traditional cooking methods. Rajkumari Ahirwar of Madhya Pradesh's Guna has benefited from the Ujjwala Yojana. She is a self-reliant woman who runs a self-help group. She supports her entire family with the gas cylinders provided under the Ujjwala Yojana and also runs a tiffin center.
6: परेशानी आती थी, धुआं लगता था, कंडा लकड़ियां बहुत ही नल की बहुत दिक्कत पड़ती थी। अब उज्ज्वला मिला है जब से बहुत फायदा है, 5 साल से यही टंकी चल रही है उज्ज्वला नाम, सब्सिडी भी मिलती है इसमें।
0: One scheme of the government has turned around the lives of many women across the country, brightening up kitchens in million households.
7: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Swachh Indhan, Behtar Jeevan.
0: farmers have been the backbone of this transformation envisioned by the Prime Minister over the past 12 years. PM Kisan Yojana has benefited 9.35 crore farmers in the 21st installment alone till November 2025, disbursing over 3.70 lakh crore rupees to 11 crore farmer families. Each farmer receives 6,000 rupees annually. It is the same story from Uttar Pradesh to Punjab.
8: मैं किसान हूँ, मैंने अपने खेत के लिए एक सोलर पैनल लगवा, जब तक धूप रहती है अच्छी सर्विस देता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पानी पानी रहता है, बिजली हो या ना हो इससे किसानों को बहुत फायदा है। सरकार की इस योजना को अधिक से अधिक किसान यूज करें, इसका बहुत बेनिफिट है हमें, लाइट हो या ना हो हमारे खेत की सिंचाई होती रहती है।
9: मेरे फादर नाम से जमीन है, उन्होंने 2000 रुपया आता है जी, मुआवजा समय पर मिल रहा, पर जो मेरी जमीन में कोई एडा मार भी पानी की मार नहीं वजती थी, तो उस तरह सरकार वालों सब्सिडी मिलती है, मेरा उन्हें सरहरी भी खाता मैंने उन्हें सरकारी स्कीम मिलदियाँ जी।

एक ऐसा था जब शुरू किया था 1000 करोड़ दिन का था, फिर हमने कुछ एक्साइज ड्यूटी कम की, अभी भी मुझे लगता है मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं, 500-550 करोड़ पर डे लॉस है। सो यू कैन सी व्हाट स्केल दैट इज, बट दैट इज द प्राइस यू पे फॉर कीपिंग फ्यूल अफोर्डेबल एट द पंप।

0: 21 people died just a few days ago in a fire that broke out in Delhi's Malviya Nagar. This is the Hauz Rani area in Malviya Nagar. And the Delhi government is now cracking down on illegal structures. It's belayed action on the part of the Delhi government. Belated action and delayed action, but perhaps still welcome. I'm going to bring in Sushant for more on that story. Sushant, is samay Delhi sarkar crackdown kar rahi hai unauthorized structures par, lekin ye pehle bhi ho sakta tha. Agar hota to 21 logo ki jaane na jaati.
1: राइट सी बात है, ये जो अब एक्शन हो रहा है उस पर सरकार की तरफ से पूरी जो कमेटी बनाई गई थी और दो दिन पहले जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने एक जो मीटिंग चेयर की थी उसमें दिल्ली पुलिस एनसीबी और सबको एक साथ रखते हुए डीडीएमए को एक पावर दी गई थी जिसके तहत दिल्ली के अंदर जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहां पर भी इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन है, वायोलेशन हो रहा है रेस्टोरेंट्स का या घर बनाने में, उन सब पर डीडीएमए एक्ट लगा करके कार्रवाई करने की शुरुआत जो है वो की गई है। हालांकि ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन इसके बाद जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से सरकार बहुत ज्यादा संजीदा हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 124 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जांच की गई है। 94 अवैध निर्माणों पर जो है वो बुलडोजर एक्शन हुआ है। तकरीबन 120 से ज्यादा प्रॉपर्टियां जो है वो सील की गई हैं। ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है इस पूरे हादसे के बाद, मालवीय नगर के बाद, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हुए, एनसीडी पर, दिल्ली पुलिस पर, फायर पर, कि आखिरकार की इतनी सारी नेगलिजेंस कैसे हुई और अलग अलग विभाग की अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो बनती। इसके बाद अब सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सुशांत, विद वेरी लेटेस्ट ऑन दैट स्टोरी एंड टेलिंग अस अबाउट द मैसिव फायर tragedy fallout where the government is swung into action. We know the sealing is happening in many places in the national capital. There's dozer action also that has been reported. Several structures in the affected area which has been in news for all the wrong reasons. This is the Hauz Rani area which had seen many illegal constructions. There's action against that. Big meat-free Kashi push and shake-up for meat and fish shops in Banaras. Kashi to push meat markets outside the city limits. No more meat shops in every lane of Holy City. Six-month timeline for meat and fish shops to relocate. Illegal meat shops under the civic body's scanner. Varanasi, most ancient and the holiest Hindu city. It's a pilgrimage town. No ban on cooked non-veg food items in Varanasi. So it's an important clarification. Big meat shop purge in Mahadev's Nagari is what we are learning. These are details coming in at this point in time. This is a decision taken by the administration to, in fact, have meat shops out of the city, not in the vicinity, and really not within the city. Illegal meat shops are under the scanner of the civic body. But to clarify for our viewers, if you're looking at consuming cooked meat in Varanasi, that is something that doesn't really change. You can if you wish to. Santosh has more on that story. Santosh, kya details is samay share kar sakte hain? Kyun ye decision liya ja raha hai ki meat ki dukanon ko bahar shahar ke lagaya jayega? Kya keh rahe hain meat ke jo vendors hain?
2: Dekhiye, ye pura faisla Varanasi Nagar Nigam ki taraf se liya gaya shahar ko vyavasthit aur swachh rakhne ke liye. Ye kaha gaya ki jo non-veg ke meat, maas aur machli ki jo dukanein hain उन सबको शहर की सीमा से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा ताकि जो भी शहर का इलाका है वो व्यवस्थित रह सके। और चूंकि धर्म की नगरी है काशी में, जब लोग आते हैं तो पूजा पाठ के लिए आते हैं, तो उसकी वजह से तमाम बाजारों के बीच में जब ऐसी दुकानें होती तो उसको देखते हुए कच्चे माल के आने में भी समस्या होती है और इससे गंदगी की भी जो नगर निगम के द्वारा कोशिशें की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से ये फैसला लिया गया कि ये जो शहरी इलाके की जो नॉनवेज की दुकानें हैं, जो मीट की दुकानें हैं, मछली मंडी है, इसको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। और इस पूरे को लेकर के एक बैठक हुई थी कल नादागन टाउन हॉल में, जिसमें वाराणसी के जो मेयर हैं अशोक तिवारी, उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि शहर विकास हो, अतिक्रमण रहित हो, तो इसके लिए जो मीट और मछली के बाजार हैं वो शहर के बाहरी छोर पर लगाए जाएंगे। उसके लिए सरकार की तरफ से ऐसे 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये सब दुकानें लगाई जाएंगी। जी
0: शुक्रिया मैं सर जुड़ने के लिए संतोष विद दैट क्विक अपडेट ऑन व्हाई मीट शॉप्स आर बीइंग आस्क्ड टू मूव आउट ऑफ वाराणसी सिटी। Our news coming in this afternoon has got to do with bulldozer action against the Mustafa Qadri Mosque built on government land reserve for a graveyard in Sambal. It now continues for the second day. Now the mosque has been demolished with bulldozers and hydra machine. Police forces are deployed at the site alongside the Tehsildar Dhirendra Kumar Singh and Naib Tehsildar Deepak Jurain. Well, this demolition process for the Mustafa Qadri Mosque began yesterday. The Mustafa Qadri Mosque is actually situated on 120 square meter plot of land. Mosque demolition, which started yesterday, continues in the Sambal district of Uttar Pradesh. Mustafa Qadri Mosque has been bulldozed here. Bulldozers and hydra machine used in this particular drive. This mosque came up illegally is what is being said. Of course, situation continues to be tense, and that's the reason why heavy police deployment is being seen at the site. The mosque was actually illegally built on land which was meant for a graveyard. I love Mohammed posters recovered by cops.
3: अप्रैल 2026 को तहसीलदार ने उसको एक्स पार्टी के खारिज कर दिया। मई के अंदर डीएम कोर्ट के अंदर हमारे लोगों के माध्यम से वकील ने जो अपील डाली उसमें तीन डेट पड़ी, जो एक पुराने डीएम थे वो उन्होंने बैठे नहीं उस समय। फिर उसके बाद में जो अब नए डीएम है इनकी कोर्ट में तीन बार मामला गया, दो डेट में नहीं बैठे। तीसरी डेट में डीएम जब कोर्ट में बैठे परसों बैठने के साथ पहली ही तारीख पर उसको ऑर्डर दे दिया गया। जबकि मैंने जानकारी करी हमारे लोगों ने और वकील ने, उसमें एक एप्लीकेशन दी थी कि उस समय वकील अवेलेबल नहीं थे और वो चाहते थे कि इसमें डेट दे दी जाए, लेकिन वहाँ पर उनसे ये कहा गया कि डीएम साहब जो हैं अपनी फाइल को ले गए हैं ऑर्डर में, आप जो अगर जो देना है डेट नहीं मिलेगी आपको, आप इसके अंदर अपना लिखित वकालत जो अपनी उसको आर्गुमेंट है वो लिखित में दे दीजिए। जो हमारे वकील थे उन्होंने लिखित में आर्गुमेंट दे दिए, लेकिन ताज्जुब यह है कि हैरानी की बात यह है कि परसों रात के 11:30-12 बजे फैसला लिख कर करके सीधे उसको निरस्त कर दिया गया, और बैक डेट के अंदर जैसा मेरी जानकारी में आया 21 अप्रैल के लिए 14 मई में एक टीम गठित करी गई कि 6 जून को इसको वो करना है, जिसका कि नोटिस गांव के लोगों को नहीं दिया गया कि इसको तोड़ने के लिए हम आएंगे।
4: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब ये इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो है पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है नजर आएंगे, और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है। और इसी तरह से जो पूरी मशीनों के जरिए इसको ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो लगातार यहां पर की जा रही है। किस तरीके से सर ये पूरी कार्रवाई जो सर चल रही है और अभी सर कहां तक पहुंची?
5: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी, और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: And more news coming in. Desi gangsters, Videshi gang war. Indian gang war spilling into European streets. Portugal shooting linked to a Desi gang rivalry. 20 rounds fired at one Gurpreet Gill. The firing video from Portugal goes completely viral on your screens at this point in time. On camera, hail of bullets by gangster. Meena gang claims role in a social media post. Audio message warns, deadly attacks are coming. Portugal turning into a gang war epicenter. Chilling will hunt you down message after Canada. Indian gangs bleed Europe. Gang rivalry, gunfire go global. Earlier, gang firings were reported in Canada. Previously, first, remember, it was the infamous Bishnoi gang. Now the Mina gang rampage. Yeah, it was seen.
6: मैं राहुल आर के मीणा, ये जो पुर्तगाल में गुरप्रीत सिंह गिल के घर के ऊपर गोलियां चली है ये मना चलवाई है, और आज तो महीने पहले 6 तारीख को गुरदीप सिंह को सिंतरा पुर्तगाल में गोलियां मारी थी गाड़ी के अंदर, वो भी मना मरवाई थी। और कोई सा भी मारे मैसेज ने नजरअंदाज करेगा ना, वो 100% मरेगा। और ये जो पुर्तगाल छोड़ के इधर उधर की कंट्रियों में भाग रहे हैं ना, भागते जाओ तुमने, भागते भागते धरती छोटी पड़ जाएगी। हमारे भाई जहाँ जाओगे ना वहां तुमने ऊपर भेजन खातर तैयार बैठे हैं, हमने सारी दुनिया घेर रखी है।
0: Right, we have that voice message also, in fact, from one of the gangsters there. This is a gang war which is now being reported in Europe. It's a desi gang war, a gang rivalry, gunfire going global really. Earlier, gang firings were reported in Canada, but the first Bishnoi, now Mina gang rampage. Remember, we've given you details in the past about the Bishnoi gang also. Arvind Oja has more. Arvind, pehle Bishnoi gang in sare incidents ke liye bahut hi infamous tha, ab ye Mina gang hai, kaun hai ye log, firing ki wajah kya hai, Portugal ke jo authorities hai wo kya keh rahe hai is pure mamle mein?
7: देखिए, पहले कभी ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एसोसिएटेड था, लेकिन ये अब अपना गैंग चलाता है, जिसमें एक आरके मीना नाम का गैंगस्टर है, जिसने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि पुर्तगाल में गुरप्रीत सिंह गिल नाम के एक शख्स के घर पर फायरिंग करवाई गई है। और साथ ही साथ इस गैंगस्टर ने दावा किया है कि 6 मई को भी इसने गुरदीप सिंह नाम के एक शख्स पर गोली चलाई थी और उसको गोली मारी थी। देखिए, ये जो सारे गैंगस्टर हैं, ये किसी न किसी केस में इंडिया में वांटेड हैं, और फिलहाल ये सारे कनाडा, पुर्तगाल और बाकी कंट्री में ये शेल्टर लेकर वहां पर लगातार बैठे हुए हैं, और वहीं पर आपसी गैंगवार, यानी कहें तो जो देसी गैंगस्टर है वो विदेशी गैंगवार में अब शामिल हो गए। विदेशों में ये लगातार गैंगवारी है, और बकायदा ऑडियो भी मैसेज सोशल मीडिया पर इसने जारी किया है, जिसमें बताया कि कैसे बैक टू बैक पुर्तगाल में 1 महीने में 2 बार इन लोगों ने गोलियां चलवाई हैं।
0: जी, शुक्रिया मैसेज जुड़ने के लिए। गेटिंग इन दोस डिटेल्स, अरविंद ओजा एंड टेलिंग अस अबाउट दैट गैंग वॉर प्लेइंग आउट इन पोर्टुगल। यू हर्ड फ्रॉम दैट वीडियो, यू हर्ड दैट वीडियो मैसेज ऑल्सो, इन विच अ वार्निंग इज बीइंग गिवन बाय वन ऑफ द गैंग लीडर्स देयर। Fresh chinks now surfacing on the India bloc armor ahead of the meeting scheduled on Monday. CPIM General Secretary has in a sharply worded letter to Congress President Mallikarjun Kharge raised the allegations by Rahul Gandhi and other senior leaders during the recently concluded Kerala elections that CPIM and BJP had struck a deal. In the letter, M.A. Baby has categorically said that India bloc was formed to politically fight BJP, and for the same purpose, many parties of otherwise electoral rivals in many states came together. CPM is now seeking a clarity over Congress's stance over the comments made by the senior leadership. Ahead of the key meeting on Monday, the opposition bloc seems to be on a shaky ground, as DMK has made it clear it will not be attending the meeting. On the other hand, Sena UBT also likely to skip the meeting physically. Listening to what Lok Sabha leader of the opposition Rahul Gandhi had said during the Kerala polls, it has really irked the CPIM here.
8: The CBI and the ED take action against opposition politicians, but do not take action against the Chief Minister of Kerala or the politicians of Kerala. I've got 36 cases on me. I've been interrogated by the ED for 55 hours continuously. Why has the ED taken no action on the Chief Minister of Kerala and his family? And the reason is that they are working together. In fact, in Kerala, it is not the CPM and the BJP. It is the CJP. Everybody knows that they are partners. And everybody knows that they are working together in Kerala to defeat the UDF.
0: More news coming in at this point in time. Vijay's TVK has launched a fresh attack on Stalin. Now, TVK warns Stalin, your own will end your career. TVK says, for few, power is only for own family. We aren't even forced to ride over allies. TVK tells Stalin, unaware of few deceiving you. Launching a fresh attack on Stalin, says your own camp will bring your political end. With the support of the People's Power, we have been elected as the single largest party. With the support of democratic forces, a democracy has been established, respecting the people's democratic verdict. The democratic forces stand with us. Pramod Madhav, getting in more, put this into perspective. What is the TVK now saying, and in what context, really?
9: Well, Sneha, this is a kind of tussle that is happening between TVK and DMK, with the chief, former chief minister and DMK president M.K. Stalin claiming that the actual TVK government is running at the mercy of DMK. And right now, he also stated that he said that he might wait until 6 months to see what is happening, but it looks like this government might not even sustain for 3 months. So, as a response to all this, now the TVK government is, the TVK IT wing is stating that in particular, the way such kind of like statements, such kind of not ground reality being known to the MK Stalin, that's the reason he was defeated in Kolkata. So, TVK is sitting there claiming that first you have to understand what is the reality before making such comments. So, this is how TVK IT wing is slamming DMK right now, Sneha.
0: Thanking you for the moment, getting in those details and putting that into perspective is my colleague Pramod Madhav. Moving on, a pall of grief has descended over the Indian Army following the loss of a brave young officer in the line of duty. The White Knight Corps has announced the untimely demise of Lieutenant Bireshwar Goswami, who made the supreme sacrifice while carrying out operational duties in Jammu and Kashmir. According to the Army, the officer was operating in an extremely challenging area marked by terrain which was difficult, steep cliffs, adverse weather conditions when the tragic incident occurred. In a heartfelt message, the White Knight Corps said that the general officer commanding and all ranks mourn the loss of the brave officer and stand in solidarity with his family during this difficult time. Lieutenant Bireshwar Goswami's sacrifice is a reminder of the immense courage, dedication and commitment displayed by Indian soldiers who continue to serve in some of the harshest and most demanding conditions to safeguard the nation. The nation joins the Indian Army in paying tribute to the fallen officer. May his soul rest in peace. May his sacrifice never be forgotten.

0: हमारे पास तीन ट्रेज हैं जिसको हमने हाई, मीडियम और लो रेट करा है डिपेंडिंग ऑन देयर माइक्रो प्लास्टिक लोड.
1: जो कुछ चीजें हैं जो हम एक्चुअली हेल्दी रहने के लिए करते हैं, बट देन दे टर्न आउट टू बी नैस्टी फॉर अस. सो प्रोटीन शेकर्स एवरीवन डज वेरी हाई माइक्रोप्लास्टिक लोड इन इट.
0: एक सैशे ऑफ ग्रीन टी में कितना माइक्रोप्लास्टिक है?
1: सो 150 ml टी दैट यू ड्रिंक has billions and billions of microplastic particles.
0: ये जो पैकेट आ रहा है,
1: करेक्ट,
0: ये प्लास्टिक है, इससे क्या जा रहा है अंदर?
1: The act of cutting, that cutting releases microplastics. Unless you are using a laser beam to cut it. हम तो ऐसे या ऐसे फाड़ते हैं.
0: I'm very surprised that you've kept this. ये तो स्टील है ना अंदर से?
1: अंदर से तो स्टील है, इसको पियोगे कैसे?
0: प्लास्टिक के कैप की वजह से.
1: और गर्म है. ये दिस इज अ सिपर फॉर हॉट टी एंड कॉफी. द हॉट टी और कॉफी इज पासिंग थ्रू दैट हॉट प्लास्टिक इनटू योर माउथ.
0: दिस इज अ कंसीलर, दिस इज अ लिपस्टिक.
1: अगर आप मेटल नहीं लगा रहे हो फेस पे तो आप प्लास्टिक ही लगा रहे हो.
0: वन सेकेंड. सो इसमें आ रहा है खाना, वो प्रॉब्लम है. इसमें गर्म हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है. पर ये तो लिखा हुआ है इसमें, देखिए इसमें लिखा हुआ है माइक्रोवेव सेफ. इसमें नमक क्या कर रहा है? प्लास्टिक और लेट मी गो स्टेप फर्दर एंड से माइक्रोप्लास्टिक्स. टुडे द रियलिटी इज दैट दे आर नॉट जस्ट अराउंड अस, दे आर इनसाइड अस. माइक्रोप्लास्टिक्स हैव बीन फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, इन प्लेसेंटा, इन सीमन, इन आर हार्ट, इन आर लंग्स, इनसाइड आवर ब्रेन एज वेल.
1: सो प्लास्टिक प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज अराउंड 3 बिलियन टन्स इन 1960s 70s. नाउ इट इज सम 450 बिलियन टन्स.
0: वाओ.
1: There in the soil, it's there in the groundwater, it's there in our lakes, in our rivers. And the largest repository of microplastics is where all the water ends up, ocean.
0: ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इसमें दो तरह के लोग हैं, ठीक है. एक जिनको प्लास्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है क्या है, सब जगह तो है, अब तो पहुंच ही गया है बॉडी के अंदर, क्या फर्क पड़ता है. और दूसरा कि भाई सब हटा दो, सब फियर मॉन्गरिंग. मैं तो जहां देख रही हूँ मुझे सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिख रहा है. माइक्रोप्लास्टिक इज अ लिटिल बिट लाइक PM 2.5. एक बार घुस गया तो घुस गया, आप उसको हटा नहीं सकते अपनी बॉडी से. इज दैट ट्रू?
1: वो निकल नहीं सकता, सब चले जाएंगे, बस त्रिवेदी बचेगा.
0: You know, I don't want this conversation to become about कि हमने बड़ी बड़ी बातें करी और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया. वुड, इज दिस ओके? सिंपल वन, अ गुड कॉपर बॉटल, गुड सोल्यूशन. दिस पैकेट, दे आर सेइंग दिस इज इंडियाज फर्स्ट नेचुरली डिग्रेडेबल मिल्क पाउच. Okay. That Mother Dairy has made. Is this good? Is this a claim that we should buy and vouch for? I have one. Do you know what this is? Does it filter out microplastic? Surely, एक balanced, nuanced तरीका है जिससे हम अपनी life का microplastic load कम कर सकते हैं, हटा तो नहीं सकते. हमारे पास तीन ट्रेज हैं जिसको हमने हाई, मीडियम और लो रेट करा है डिपेंडिंग ऑन देयर माइक्रो प्लास्टिक लोड. ठीक है, तो पहले गुड न्यूज से शुरू करें, बैड न्यूज से शुरू करें?
1: गुड न्यूज से चलो,
0: गुड न्यूज से शुरू करते हैं. ठीक है, तो पहले लो ट्रे की बात करते हैं. ठीक है, सो हियर व्हाट डू वी हैव? वी हैव ये बर्तन मांझने का स्पंज, द स्क्रब देयर, वी हैव फेस वॉश, राइट?
1: इसमें
0: अगेन अ स्क्रब, बट ये फेस वॉश के अंदर ये बहुत छोटी छोटी जो दिख रहे हैं,
1: ये सब ये,
0: दीज आर माइक्रो बीड्स. दे एक्चुअली सेल इट सेइंग दैट दिस हैज माइक्रो बीड्स, सो वी विल टॉक अबाउट दैट. इसके अंदर ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के अंदर भी वो थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स हैं,
1: करेक्ट.
0: एंड दिस वन, दिस इज माई किड्स बाथ टाइम
1: प्ले बुक.
0: हाँ, इससे ही शुरू करते हैं.
1: हाँ ठीक है. So I'll tell you up front what are the principles that we use to classify these. Then everything will make more sense.
0: Okay.
1: And फिर जो चीजें यहाँ पे included नहीं है, they also our audience can figure out.
0: Thumb rules थोड़े से.
1: So, thumb rules. So plastic, food and heat. ये combination जहाँ पे भी आ रहा है तो वो गड़बड़ है.
0: Plastic, food
1: and heat.
0: Heat. Okay.
1: ठीक है. So और कहीं पे भी प्लास्टिक विद हीट, इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स.
0: ओके,
1: देन जब आप उसको मारोगे, पीटोगे, मतलब जब ज्यादा एजिटेशन होगा, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और फ्रिक्शन, और इवन विल हैव सम इंस्टेंसेस ऑफ एक्चुअली बीटिंग इट, देन दे विल रिलीज अ लॉट ऑफ microplastics.
0: Okay.
1: When there is long-term exposure to liquids, especially oily and acidic liquids, then there will be a lot of leakage because those liquids, those things are designed to dissolve things, right? Acid is designed to dissolve something, and even oil is hygrophobic. It will interact much better with a plastic, which is not a very water-friendly substance.
0: So, आपने पांच चीजें बताई. पहला है heat. ये ज़्यादातर लोग जानते हैं. अगर plastic में heat के साथ साथ oil है, तो problem है. अगर acid है, तो problem है. फिर दूसरा हो जाता है कि आपके में अगर लॉन्ग टर्म ज्यादा देर तक रखा हुआ है प्लास्टिक के अंदर तो माइक्रोप्लास्टिक ब्लीड करेगा उसके अंदर, और अगर मूवमेंट है, बहुत शेक कर रहे हैं आप या कुछ कर रहे हैं, तब माइक्रोप्लास्टिक ब्लीड करेगा.
1: एब्सोल्युटली
0: बेसिकली पांच हैं,
1: पांच चीजें हैं.
0: ओके,
1: सो नाउ ऑल ऑफ दिस विल मेक सेंस.
0: ठीक है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. पहले शुरू करते हैं, इसमें नमक क्या कर रहा है?
1: हाँ ना, नमक में प्लास्टिक है,
0: मतलब
1: आपके टूथपेस्ट में नमक है और आपके नमक में प्लास्टिक है. सो इंडिया का ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल जो पैकेज सॉल्ट है वो कहाँ से आता है? लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और उससे सॉल्ट बनाते हैं. मोस्ट ऑफ दिस इज सी सॉल्ट. सो वन थिंग वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर, सी इज द रिपोजिटरी ऑफ प्लास्टिक्स फॉर the entire world.
0: Oh, yes, that's
1: so
0: how.
1: Anything that comes from sea has a lot of microplastics.
0: Yes.
1: Secondly, it is crystals. They are broken down in industrial processes. And industries mein, jitna humare ghar mein plastic hota hai, aajkal usse zyada industries mein use ho raha hai. So that plastic keeps getting mixed up in this.
0: नमक तो नहीं avoid कर सकते ना, इसका तो कोई switch भी नहीं है.
1: हाँ तो कम नमक use करो ना, health के लिए anyways अच्छा है. नमक थोड़ा कम use करें. And we keep saying that salt does have plastic, but in the amounts that we ingest it, it's not that big of a deal. That's why it is in medium. अगर इसको हम weight के proportion में रखेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा. But जितना हमको use करना चाहिए उस हिसाब से इट्स नॉट दैट मच.
0: ओके ओके. फॉर शुगर द स्टोरी इज डिफरेंट.
1: शुगर इज मोरल इज द सेम. अगेन द शुगर केन इज द प्लांट एंड दिस इज अ कॉन्सेंट्रेट. सो इफ देर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्लास्टिक इन द शुगर केन, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड दैट एंड देन अगेन इट इज प्रोसेस्ड इन एन इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग, फॉर मेकिंग इट लुक वाइट, फॉर एवरीथिंग. सो दैट इंडस्ट्रियल प्रोसेस add another level of microplastics. But again, our sugar intake should be less than 5% of our total calorie intake. So if your sugar intake is higher, that sugar is causing you more harm than the plastic inside it.
0: So main aapko isme batati hu mere liye revelation kya hai. Generally, agar maine bola hota ki salt aur sugar ke andar microplastic hai, logo ko lagta kyunki wo packet ke andar aata hai.
1: Log
0: ये नहीं समझ पाते कि वो पानी में है, इस वजह से आ रहा है.
1: पानी में है, सॉइल में.
0: ये बहुत बड़ा रेवलेशन है.
1: करेक्ट.
0: सो
1: इस जार में भी है तो भी वो उसमें माइक्रोप्लास्टिक तो है ही है.
0: हाँ, शुगर की बात हुई है, चाय भी ले ही आते हैं.
1: हाँ,
0: वी शुड जस्ट गेट देयर. सो दिस इज सम इंस्टेंट मसाला चाय, ये छोटा सा पैकेट दिखाने के लिए. तो अगेन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो पैकेट आ रहा है,
1: करेक्ट,
0: ये प्लास्टिक है, इससे क्या जा रहा है अंदर?
1: सो पैकेट में जब तक वो सील्ड रहता है तो थोड़ा बहुत जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है. बट आप पैकेट तो डालोगे नहीं. द एक्ट ऑफ कटिंग एंड देन पुटिंग इट आउट, दैट कटिंग रिलीजेस माइक्रोप्लास्टिक्स.
0: अच्छा, क्योंकि आपने टेट्रा पैक मीडियम में रखवाया है, लेकिन ये जो कप्स है,
1: हाँ,
0: ये हाई,
1: ये हाई में है.
0: ये क्यों है?
1: क्योंकि इसमें तो आप गरम गरम चाय डाल रहे हो.
0: आई सी. आपने स्किन केयर की बात करी थी.
1: These are
0: a concealer, this is a lipstick.
1: Yeah, these are all waterproof kind of products.
0: Haan.
1: So the reason they are waterproof, anything is liquid proof. It's either metal or plastic.
0: Including sunscreen. Agar aap,
1: including sunscreen. Agar aap metal nahi laga rahe ho face pe, to aap plastic hi laga rahe ho. Right? So anything which is waterproof is usually plastic. And uska to naam hi hai long lasting, so it has to be on the skin for a long time. And it will contain some things to make it stick to the skin. Otherwise it will peel off.
0: ओ गॉड हमारी सबसे बड़ी ट्रे हमारी हाई माइक्रोप्लास्टिक लोड वाली जो ट्रे इस पर आते हैं, किससे शुरू करें? चलिए सबका फेवरेट प्रोटीन पाउडर शेकर से यूज करते हैं.
1: सो कुछ चीजें हैं जो हम एक्चुअली हेल्दी रहने के लिए करते हैं, बट देन दे टर्न आउट टू बी नैस्टी फॉर अस. सो प्रोटीन शेकर्स एवरीवन डज, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल दैट यू हैव टेकन. इट हैज अ स्पाइरल इनसाइड इट टू मेक इट इजियर टू मूव
0: बिकॉज देयर इज अ पर्सन का है. ये भी छोड़ देना इसके बाद.
1: सो Because that introduces more friction, easily yeah. mix होता है yeah. जब ये spiral अंदर होता है. But हाँ. again, friction, agitation, trauma, and drinking directly after that.
0: Yeah.
1: So this does have a very high microplastic load in it, similar to another thing that we do to stay healthy,
0: which is green tea.
1: Green tea. So green tea, it goes into the hot water, stays in hot water, it releases billions of microplastic particles, and then we drink it, thinking that it's making us healthier. So green tea is good for us. There's no doubt about it. But green tea peena hai, to green tea ko loose leaves mein le, aur usko thode der soak kare. Actually, that experience is better. And उसके बाद उसको स्ट्रेन करें, प्लास्टिक स्ट्रेनर से नहीं करें.
0: प्लास्टिक छन्नी, हाँ, दैट
1: प्लास्टिक छन्नी,
0: छन्नी नहीं यूज करनी है. अच्छा, और क्या? अच्छा, थिंग्स आवर मदर्स लव सो मच,
1: या
0: कंटेनर्स.
1: कंटेनर्स, सो कंटेनर्स आर इन हाई बिकॉज दीज आर मार्केटेड एज माइक्रोवेव सेफ,
0: बीपीए फ्री, माइक्रोवेव सेफ, ये सारे लेबल्स होते हैं, पर ये सब लीक कर रहे हैं प्लास्टिक.
1: बीपीए इज नॉट देयर इन दिस. बीपीए इज अ टॉक्सिन. So we are not getting direct toxins. We have to think of microplastics not as direct toxin, but as a contaminant that we want to avoid.
0: इसमें लिखा हुआ है microwave safe.
1: Correct. लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं ना.
0: तो one second. So इसमें आ रहा है खाना, वो problem है. इसमें गर्म हो रहा है, वो भी problem है. Basically ये डब्बे avoid करने हैं.
1: So इस डब्बे में आप मस्त बढ़िया करी मंगवा रहे हैं.
0: हाँ.
1: उसमें से आधी खा रहे हैं, बाकी हाँ. फ्रिज में रख रहे हैं
0: हाँ.
1: जिसमें फैट भी है, जिसमें एसिड
0: हाँ.
1: भी है
0: हाँ.
1: और आप उसको फ्रिज में रख भी रहे हैं और फिर अगले दिन फिर इसी में उसको गर्म भी कर रहे हैं. सो एज सून एज पॉसिबल इफ यू वांट टू स्टोर इट इन द फ्रिज, स्टोर इट इन मेटल, ग्लास, सिरेमिक. ये जो तीन चीजें हैं, दीज आर सेफ टू स्टोर. ग्लास एंड सिरेमिक आर सेफ टू माइक्रोवेव.
0: राइट. सी देखिए, अब जैसे ये है, इसके अंदर कई सारी डिप्स आती हैं, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है रीयूजेबल फूड कंटेनर अबव 350 माइक्रोन्स नाउ, एंड इट सेज माइक्रोवेव सेफ, एंड उसमें कुछ स्टिकर विकर भी लगा है कि ये सब बिल्कुल ठीक है. But you're saying all of this is
1: and in general
0: and इसके अंदर गरम नहीं आएगा तो इसके अंदर acid तो आएगा.
1: Acid आएगा.
0: If you order like a sushi or something, उसके साथ आएगा. Soy will come or something else will come.
1: Yeah. So in general, these black plastics are recycled plastics, and we don't know what they are made of. And there's another category of that.
0: Spoons.
1: Spoons and forks. These generally contain a lot of flame retardants in them. जब वो mix होता है तो mix में बहुत सारे
0: flame retardants क्या होते हैं?
1: जो flame से बचने के लिए जो आपके engine के ऊपर covers हैं, जो हमारे fire proofing के लिए use होते हैं, they are not food grade at all.
0: Okay.
1: And all of that is mixed in this. So these are in high because these are not food grade plastics. In general, try to avoid using black plastics because they don't have a source on it. See, every plastic na needs to contain this. They have this label. And I'm too old to read this
0: I'll
1: small label. देखो बताना कितना जरूरी है ना कि मैं ओल्ड हूँ और ये पढ़ सकती
0: हूँ. नहीं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ तो बना हुआ है.
1: वो ट्रायंगल जो बना है, ट्रायंगल के अंदर क्या नंबर है?
0: 05 PP.
1: ट्रायंगल के अंदर, दैट रीसाइकल ट्रायंगल के अंदर क्या है?
0: 05.
1: So this is supposed to be food grade. 05 is supposed to be food grade. But we don't know about this manufacturer and we need to trust only the brands that that we trust. So these reusable ones will probably have 02. इफ इट्स नॉट देयर इट नीड्स टू बी
0: देयर. दिस इज आल्सो 5. दिस इज आल्सो 5. वो चेक करते हैं.
1: इस दीज नीड टू हैव ईदर 02 और 05. इट डजंट हैव अ
0: रिसाइकलेबल.
1: या
0: दिस हैज 5.
1: सो O2 इज फॉर कोल्ड.
0: हाँ.
1: जिसमें हम दाल चावल डब्बा में रखते हैं. दे आर जनरली सेफ.
0: अनकुक्ड दाल चावल.
1: अनकुक्ड दाल चावल जो स्टोरेज में रहता है. राइट. दे आर जनरली सेफ व्हेन दे आर नॉट हीटेड एंड व्हेन वी डोंट स्टोर एसिडिक एंड ऑयली फूड इन देम. तो अचार उसी में आता है.
0: अचार उसी में आएगा. करेक्ट.
1: बट अचार उसी टाइप के डब्बे में आता है. सो दैट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स ग्लास इन सम वे और एटलीस्ट एट आवर होम स्टोर इट इन ग्लास.
0: या फिर वो अचार वाले जो सिरेमिक बर्तन हुआ करते हैं उसके अंदर.
1: बर्नी.
0: ओके, लेट्स मूव टू अदर स्टफ इन हाई. सो दिस विल आल्सो कम इन द सेम कैटेगरी जिस पे. पर ये ब्लैक नहीं है.
1: ब्लैक नहीं है. दिस इज ऑल्सो सिंगल यूज. लेट्स सी. कोई लेबलिंग नहीं है. मीन्स इट इज नॉट एट ऑल सेफ. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एनीथिंग एनी प्लास्टिक विच डजंट हैव अ लेबल ऑफ विच कैटेगरी इट इज. सो वन इज सेफ फॉर सिंगल यूज. टू इज सेफ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज विदाउट हीटिंग विदाउट ऑयल विदाउट एसिड. थ्री इज कंप्लीटली बैंड. It contains polystyrene, styrofoam.
0: Okay.
1: Styrofoam should not be used in food.
0: Okay.
1: So most of the good brands are actually moving away from styrofoam. Good groceries are also moving away from styrofoam. And styrofoam ka ek problem hota hai, wo styrofoam niche upar ye और बीच में कट फ्रूट्स विच आर सपोज टू कीप अस हेल्दी.
0: यस
1: राइट. सो थ्री स्टायरोफोम. पॉलीस्टायरीन होता है विच इज एक्चुअली टॉक्सिक. इट्स नॉट अबाउट माइक्रोप्लास्टिक. इट बिकम्स टॉक्सिक. फोर हैज अ फ्यू थिंग्स समथिंग सम ऑफ विच आर गुड एंड सम आर नॉट गुड बट इट्स जनरली नॉट यूज फॉर अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स. फाइव इज दीज माइक्रोवेव सेफ काइंड ऑफ थिंग्स. सो recycle with number 5 is microwave safe, but I advise not to keep anything with plastic in microwave. It is good for routine storage at room temperature, carrying your some snacks to your office. That's good. They are waterproof. They are
0: to jo log kabadi ki tarah ise ikhatta karte hain aur fir bolte hain hum to reuse kar rahe hain. Unko karna hai ki nahi karna
1: hai? Bilkul nahi karna hai.
0: Nahi karna
1: hai. Aur ye reuse karenge scratch bhi honge. They will release even more microplastics. These are not meant for reuse. These are meant for single use at best.
0: Okay, chaliye. Should we move to the pan? Okay,
1: again.
0: So, बहुत सारे रीजंस हैं नॉनस्टिक ना यूज करने के. एक और आप आज बता दीजिए.
1: सो मेन नॉनस्टिक से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. ओके. नॉनस्टिक व्हेन यूज्ड वेल इज वेरी गुड. इट अलाउज अस टू कुक हेल्दी फूड इजीली. मेक इट क्रिस्पी विद लेस ऑयल. ऑल दोस थिंग्स. बट वो टेफ्लॉन जो कोटिंग है ना वो हेल्दी इसलिए है. एक मैंने कहीं तो बोला था कि जब डोसा बनाते हैं तो डोसा तवे से क्यों चिपकता है. उसको प्यार नहीं होता है. उसको उसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है. टेफ्लॉन का प्रॉपर्टी है कि टेफ्लॉन डजंट रिएक्ट टू एनीथिंग. इट शुड नॉट बी हीटेड टू मच. टू मच हीट डैमेजेस द कोटिंग. टू मच स्क्रेपिंग डैमेजेस द कोटिंग. और उसके नीचे जो लेयर है That is not good for us.
0: So,
1: आपने बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल दिखाया है जिसमें मेटल ऐसा बाहर निकल के नहीं आ रहा है. जनरली तो ये पूरा एरिया में मेटल दिखता है.
0: हाँ, पूरा रंग दिखने लगता है. हमने एक और पॉडकास्ट करा था कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर. तो उसमें भी उन्होंने यही बात करी कि एक्चुअली ये लोगों को पता नहीं है और ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है पर हम इंडियंस हम पढ़ते नहीं है. ठीक है. तो ये जब आप कोई भी नॉन स्टिक लें, हमारी आदत क्या होती है, गैस चलाई, तवे को गर्म करा, फिर हमने चीजें डाली. नॉन स्टिक में ऑपोजिट करना है. आपको ठंडे पैन में चीजें डालनी है और फिर गैस ओपन करनी है. ये एक सिंपल सा स्विच है. एंड अगेन आई कीप गोइंग बैक टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. राइट. हम नहीं कह रहे हैं ये सब उठा के फेंक दो. हम कह रहे हैं यूज करो, कम यूज करो, माइंडफुली यूज करो.
1: माइंडफुली.
0: राइट. और यही लोगों को समझ में नहीं आता है.
1: गुस्सा नहीं निकालो. जिसके ऊपर निकालना है उस पर निकालो, इस पर मत निकालो.
0: सुबह सुबह भाई टिफिन भी बनना है, ऑफिस भी जाना है, थोड़ा मुश्किल है. लेकिन इस पर आते हैं. एवरीबडीज फेवरेट वेरी नाइस, लंच टाइम ऑलमोस्ट हो गया है तो चलिए हम कोरियन नूडल्स की, इंस्टेंट नूडल्स की भी बात कर ही लेते हैं. इसमें क्या प्रॉब्लम है?
1: तो इसमें नूडल्स हैं जिसमें आप गरम पानी डालेंगे,
0: हाँ,
1: फिर उसको 3 मिनट तक रहने देंगे, फिर नूडल्स विद कोरियन फ्लेवर्स विद सम प्लास्टिक्स हम एंजॉय करके खाएंगे.
0: लाइक यू सेड, बहुत सारे रीजन से आपको इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने चाहिए, पर एक दो बार अगर खा रहे हैं तो निकाल के दूसरे बर्तन में खा लें. बेसिकली एजी स्विच. क्लिंग फिल्म, ये तो सबको पता है, बट
1: क्लिंग फिल्म को इन जनरल ऑयली वेट एंड हॉट चीजों पे यूज नहीं करना चाहिए. तो गरम गरम चपाती क्लिंग फिल्म में रोल करके लोग टिफिन में लेके जाते हैं. एल्यूमिनियम इज स्लाइटली बेटर, और नॉट यूजिंग एनीथिंग, जस्ट यूजिंग सम पेपर एंड पुटिंग इट इन
0: बटर पेपर
1: डब्बा. पेपर इज ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट बटर पेपर हैज. ट्रेडिशनल बटर पेपर डिड नॉट हैव एनी प्लास्टिक्स, बट आई डोंट नो वॉट बटर पेपर वी आर गेटिंग टूडे एंड वॉट इट हैज, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट.
0: ओके. अच्छा, कई बार ना क्लिंग क्यों इतना ईजिली होता है, क्यों मुझे मम्मी बोलेंगी कि अरे इतना आसान हो गई है जिंदगी. फ्रूट्स जो कटे हुए रह जाते हैं, पूरा कोई तरबूज तो घर पर खाता नहीं, वो कटे हुए जो रह जाते हैं उसके ऊपर लगाते हैं. बट फ्रूट्स ऑल्सो देर ऑल्सो एसिडिक देन.
1: Fruits are slightly acidic and we are storing it. So cut fruits in styrofoam and cling film is not a very good idea.
0: Okay. So ये सारी चीजें तो हमने discuss करी. अब मेरे पास ना कुछ और सवाल भी हैं. एक और tray है वो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि high है, low है कि medium है, तो वो आपको दिखाते हैं, फिर we'll do.
1: अब आप जवाब दोगे.
0: हाँ, okay. चलिए, मेरा knowledge थोड़ा test हो जाएगा. Okay. Questions. Okay. चलिए. Okay, let's start. ये मेरा ही सिपर है. Very nicely, Juhi, my producer, has put it there. Okay, so ये मुझे बताना, ये high, low है कि medium है?
1: आप बताओ.
0: Okay, so ये अंदर का पूरा, क्योंकि steel है, पर इसका cap is plastic. And so अगर मैं ये medium में डालूंगी, क्योंकि लो में डालूंगी बिना ढक्कन के अगर मैं सिर्फ ऐसे पी रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये घर से आएगा, ऊपर नीचे होएगा, तो मैं इसको मीडियम में डालती हूँ.
1: ठीक है. एंड अगर इसमें कोल्ड ले रहे हैं तो फिर भी आप लो में डाल सकते हैं.
0: ओके.
1: अगर इससे हॉट कॉफी या टी सिप कर रहे हैं तो फिर ये मीडियम में चला जाएगा.
0: ओके. लेट्स कम टू दिस. ओह, दिस इज, आई मेड पॉप्सिकल्स लास्ट वीक इन दिस. I was told, I bought it online thinking it's BPA free, but I think because isme intense cold mein jayega aur baki fruits dalenge wo acidic honge, to kya ye high
1: hai? Wo hai, but generally don't freeze it too long in this.
0: Haan.
1: Don't use it for long term storage. But in general, just to make popsicles and get it out, cold will generally suppress any leaching.
0: Yeah, but fruit होगा ना उसके अंदर acid.
1: थोड़ा सा तो exposure रहेगा. इसको low में डाल दीजिए, आपको थोड़ा शांति भी मिलेगी.
0: शांति मिल गई मुझे. Okay. अच्छा, this is very interesting. Plastic तो Intero Germina के अंदर भी है, और plastic तो हमारी eye drops में भी है, तो directly अंदर जा रहा है, और ये तो अंदर chemicals हैं, so
1: मेडिकल ग्रेड जो पैकेजिंग होता है, इट इज मेंट टू नॉट बी अफेक्टेड. एंड यू विल सी दैट ईच काइंड ऑफ मेडिसिन विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक अराउंड इट. सो दैट इज हाउ दे आर टेस्टेड. एंड मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक सिरिंजेस, दे आर सिंगल यूज ओनली. प्लास्टिक आईवी फ्लूइड बॉटल्स, द कैनुलास, they are designed for that they will not be toxic to us in any way.
0: Okay.
1: Right? So medical grade plastic, that's why for an equivalent amount of plastic, they generally cost a little more. And so buy from reputed brands and get these things from a good brand that you trust. Because it's not just the plastic you need to trust, you also need to trust the medicine inside it.
0: Yeah, that's important.
1: Get it from a good brand and you can be reasonably sure that plastic is not going to harm you.
0: इंटरनेट पे बहुत सारी अफवाहें बढ़ती रहती हैं, लेकिन इंटरनेट की नहीं, डॉक्टर वेरिफाइड न्यूज सुनिए, बिकॉज दैट इज व्हाट विल कीप यू गोइंग. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.

0: इंसिडेंट हुआ था करीब 9 बजे की बात है। तो 9 बजे में पहले तो ये थोड़ा बहुत ही मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें। तो जब तक हम पहुंचे थे तब तक ऑलमोस्ट मेनली तो जो हमने डेड बॉडी निकाली है डेड
1: और देख लो और है।
2: थर्ड फ्लोर से 3 नाइजीरियन 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
3: जैसे ये आग लगा है जैसे इन्होंने इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई।
4: होगा
5: 20 लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया था गद्दों के जरिए और सीढ़ियों के जरिए।
6: पूरे अंदर ग्राउंड में सबसे ज्यादा आग लगा हुआ था, इसीलिए आदमी जो थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी थे वो तो कूद गए खिड़की से, और जो कमजोर होगा अंदर में रहते हुए होटल में वो बच पर नहीं पाए।
7: The fire that started in this building, this accommodation, which had a bread and breakfast scheme, killed 21 people. It was not an accommodation. It was a funeral pyre. It was not an accident. This was a man-made tragedy. The people living here were chosen this as their accommodation perhaps after looking into the website and the social media pages of this particular bed and breakfast scheme accommodation, perhaps thought that they would have had a comfortable stay here. What they didn't know is that this is going to be their last stay ever in any such accommodation. They were actually here in Delhi to take care of their loved ones, many of them medical tourists who were getting treatment in a private hospital just in the vicinity. Little did they realize that they were simply sitting ducks. This place was not designed to offer them comfort or proximity to the hospital. This place was actually designed to kill. The people living here were sitting ducks.
8: हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का मदर बिटिया वाइफ तो भी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा।
9: हम पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता, इसकी बीवी और 2 बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज।
10: बहुत ही अच्छे व्यक्ति धन्य थे वो और सबसे मिलनसार, और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके मैं क्या कहना चाहूँगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी तक ये नहीं है कि वो भाई इस तरह की उनके साथ हादसा हुआ और कोई डेथ हो गई।
11: घटना में मेरे एक छोटे मौसा जी जो अजमेर रहते हैं वो मौसा जी और मौसी की भी डेथ हो गई और मेरे मामा जी के लड़के जो किशनगढ़ रहते हैं उनकी भी डेथ हो गई। टोटल 8 लोग हमारे परिवार से इस दुर्घटना में डेथ हो चुके हैं।
12: जब 5 परिवार के इसी घर के सेक्टर 46 के लोग वहां पे थे तो वजह क्या थी कि इतने सारे लोग एक साथ वहां रुके हुए?
11: एक्चुअली मेरे मौसा जी का ट्रीटमेंट साकेत हॉस्पिटल में चल रहा था और जो मेरे मौसी का परिवार है जो गुड़गांव में रहते हैं उनके लिए साकेत डेली अप डाउन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने साकेत हॉस्पिटल के सामने ही होटल के अंदर रूम लिए थे। तो जो लोग किशनगढ़ से और अजमेर से आए थे मिलने के लिए वो लोग भी उसी होटल में चले गए और सबका साथ प्लान था कि वहीं से इकट्ठे होकर सब लोग साकेत हॉस्पिटल जाएंगे।
7: And what's really left behind in the narrow lanes of Hosrani where this horrific incident took place are stories now that really are a silver lining in the very dark clouds. Stories of heroism, sheer bravery and most importantly of humanity, of the locals here who rose to the occasion, did what they could, used bed sheets, mattresses, ropes to bring down the people from the building that was blazing, from the inferno, helped them, encouraged them to step out, to jump in fact from the building, from the windows so that they could save their lives even if they would have been injured. And that's what exactly happened. Many of these locals administered CPR, lot of them in fact helped take the patients to the nearby Max Hospital, helping save many lives. This tragedy would have been far, far worse.

0: मंसूरी साहब, क्या मंजर था? आपने जो काम किया है वो बेहद तारीफ के लायक है।
1: मंजर भयानक था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमने सारे गद्दे निकाल के बाहर डाल दिए सड़क पे, उन पर कूदे लोग, 7 से 8 लोग कूदे उसमें। अच्छा। उनकी सबकी जान बच गई। और उसके बाद में बहुत तगड़ी आग लगी, फायर ब्रिगेड आ गई, उसने बुझाया, फिर कैजुअल्टी के लिए हमने अपना कपड़ा दिया, बेड शीटें दी, रजाइयाँ दी, चादरें दी, वो सब हमने जो भी था सारा दुकान का सामान दे दिया हमने उनको। हमने कोई समय नहीं देखा ये कौन है कौन नहीं है, हमने देखा ये हमारा भाई है, हमारा इंसानियत का फ़र्ज है किसकी मदद करना।
0: जो लोग कूद रहे थे उसमें महिला और बच्चे पुरुष सभी थे उसमें?
1: हाँ, उसमें पुरुष भी जो कूदे हैं, 2 लेडीज़ हैं और 6 पुरुष हैं जो कूदी ऊपर से, 4थी और 5वीं 3री से।
0: अच्छा, तो आपको भी चोटें आई हैं जब आप लोगों को बचा?
1: हाँ, मेरे पैर में घुटने में तकलीफ हो गई, झटका गया, और बच्चे के पैर में कांसे लगाए, मेरा बेटा अरमान।
0: अच्छा,
1: उनके पैर में कांसे।
2: होटल के सामने ही मेरी शॉप है, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से।
0: मंसूरी भाई, कितनी पुरानी आपकी दुकान है?
2: लगभग 40 से 45।
0: आप सोचो जो ये हादसा हुआ था और आपकी सूझबूझ से जो है कई लोगों की जानें बची, क्या मंजर था भाई साहब?
2: मंजर बहुत डरावना था, चीख पुकार थी, फ्लोर पे से सब चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प हेल्प, क्यों? बाहर कंट्री के लोग ज़्यादा थे। अच्छा। वो हिंदी जानते नहीं थे इसलिए हेल्प हेल्प करके वो बहुत चिल्ला रहे। तो देखा तो हमने, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से आवाज़ आ रही थी, मैट्रेसेस निकाले, कम से कम 20 से 22 मैट्रेसेस बाहर रोड पे बिछाए, जिन पे 7 से 8 बंदे कूदे, जिसमें 2-3 लेडीज हैं, बाकी आदमी हैं, एक बच्चा है।
0: आपको भी चोट लगी है, मैं देख रहा हूँ।
2: कांच लगा है हाथ में, ये 2 कांच लगे हैं, एक अंगूठे में, उंगली में कांच लगा है।
3: ऐसा था वहाँ, कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं दिखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए, हमने निकाले, नीचे से उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले।
4: कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, तो जहाँ मेन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी आग लगी थी, ऊपर वाले जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बंदे थे, वो कोई निकल नहीं पाया। फिर नीचे से ही हमने ईंटें मार के, पत्थर मार के वो शीशे तोड़े थे।
5: Proximity to this private hospital that became the selling point of the flurry stays, the bed and breakfast scheme accommodation that caught fire. But it was not the only one. There are several in the vicinity of this hospital in the Malviya Nagar area of Delhi, the Hauz Rani area of Delhi, and that's the reason why the crackdown by the Delhi government is underway. Well, as far as this hospital is concerned, and as far as the patients are concerned, it continues to have 6 patients on ventilator support. Many of them received fractures because they jumped from out of the window from the building, essentially to save their lives. Of the 21 people died, the cops have identified 12 as foreign nationals.
6: दिल्ली एम्बुलेंस ले ही जा रही थी, स्थिति थोड़ी सी डाउन थी सर, हाँ, क्योंकि एक तो दम घुटा था, तो उसकी वजह से पेशेंट हम नहीं कह सकते ना।
7: और देख लो, और
8: पर जब हम आए केवल पुलिस वाले थे, 5 विकेट नहीं पहुंचे थे, आते ही हमें तुरंत एक साथ 4 कैजुअल्टी मिल गई, 4, उसमें बच्ची भी थी और एक बुजुर्ग भी थे, उन 2 अनकॉन्सियस पेशेंट थे, उनको हम स्टेबल करते हुए मैक्स इमरजेंसी में हमने जैसे तैसे उनको पहुंचाया, उनको पहुंचा कर तुरंत वापस आए, 2 पेशेंट फिर में हमें मिल गए, फिर उनको पहुंचाया, पहुंचाने में कई तो हमें CPR देते हुए लेके गए, ऑक्सीजन पर लेके गए, कईयों को हमने एम्स ट्रॉमा छोड़ा, कुछ को यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में छोड़ा। पेशेंट पे पेशेंट मिले जा रहे थे, बहुत सारे पेशेंट तो सर डिक्लेयर थे, वो डेड थे, उन सारे पेशेंटों का इमरजेंसी में छोड़ा सर, पेशेंट 45 से 48 के लगभग निकले थे, और कंटिन्यू एक बार में 3-3, 4-4 पेशेंट को डाला जा रहा था।

0: What really stands out here are a dozen plus lapses. This was actually a bed and breakfast scheme accommodation and had the permission for 6 rooms. Imagine there were 25 rooms that were functioning out of this place. The owner, who's now been, in fact, arrested by the police, has clearly said that he never really obtained a fire no objection certificate. There was no paperwork that was done essentially by the MCED. So how was this place really functioning for so many months at a stretch is a big question. They were advertising. They were doing publicity campaigns on social media, asking people to, in fact, use their accommodation. How was all of this being done in such a brazen fashion? That is the big question here. There was a kitchenette in several rooms. Again, a violation. Rooms within the basement. What actually is allowed for a bed and breakfast scheme accommodation is a small eatery that can offer snacks, but a proper restaurant was running right out of this accommodation.
1: Anjum ji, sabse badi chashmadi is agnikand ki Anjum ji hamare saath maujood. Anjum ji, kya dekha? Kaise pura
2: hal hua? Yahan pe mere father ka jo room hai, iske road ke side mein hi hai. To mere father heart patient hai, diabetic bhi hai. To hum unko subah subah khali pet kuch dene jate hain. Dene gaye to yahan pe smell aa rahi thi. Yahan pe smell aa rahi thi bahut zyada. To hame laga ki kya hai? Fir hame laga shayad aise hi. Fir sparking hone lagi yahan pe. Uske baad se yahan pe log unko phone kar rahe the fire brigade walon ko. 8 baje se phone karna chalu kiya. Yahan pe 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की. अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती.
1: अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
2: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में. शोर मचा, देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
1: फोर्थ फ्लोर
2: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड. और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है. यहाँ से भी लोग इतना गिरे. ये सारी जो खिड़कियां, ये लोगों ने तोड़ी है. हाँ. जो अंदर थे इनके,
1: अच्छा,
2: उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं. इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं. कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी.
1: एक बात बताइए, एनओसी मिल सकती इस होटल को?
2: इस होटल को एनओसी इसलिए नहीं मिल सकती, इन्होंने 5-6 कमरे एक फ्लोर पे बनाए तो भी ठीक है. उन्होंने 25-25 कमरे इसमें बना रखे हैं. कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने नहीं बताया. एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है.
0: This horrific incident from the national capital has once again put the spotlight on two things that the Delhi government has done very recently. One is tweaking of its policies regarding the bed and breakfast schemes. It's a draft bed and breakfast schemes that seems to be relaxing the norms for setups like these. The second one has got to do with fire safety norms, essentially enabling private players to come in to check for fire safety norms enforcement in accommodations of this kind and many other commercial accommodations. On the 27th of May, the government proposed a new fire safety framework under which building owners can obtain fire clearances through private fire auditors rather than relying solely on inspections by Delhi Fire Services. The same week, the government announced the draft bed and breakfast policy by allowing residential properties with up to 8 rooms and 16 beds to operate as B&B units, introducing online registration and self-certification. This was in stark contrast to the 2007 bed and breakfast framework, which relied very heavily on inspections and departmental scrutiny before approvals. The suggested bed and breakfast scheme has now been withdrawn. Fires blazing through buildings, hospitals, ICU and NICU units are unfortunately not uncommon. Several instances have been reported in the past, including the 2020 fire at a neonatal center in Delhi that charred newborn babies alive.
3: My
0: We are in Delhi's Green Park area, and right behind me is the ill-fated Upahar Cinema that caught fire 30 years ago, killing 59 people. This cinema theater in ruins now stands testimony and is a grim reminder of how building violations continue, not just in Delhi, but in many parts of the country, and how the high and mighty often get away. It's been 30 years since this tragedy that killed so many people. The big question is, what have we learned since? As these incidents continue, as deaths are reported, not just infrequently, but time and again, like in the case of the tragedy we've seen in the Hors Rani area of Delhi.
3: हम इस वक्त मालवीय नगर के हौज रानी के एक फ्लोरिश इन रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद है होटल में, और आपको हम ये दिखा दें कि फिलहाल अब यहाँ पर रिसेप्शन पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अटेंडेंट जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस फ्लोरिश इन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जो लाइसेंस की परमिशन दी गई है वो 6 रूम की इजाज़त जो है वो दी गई है। 3 रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर, 3 रूम सेकेंड फ्लोर पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया है। अब आपको ग्राउंड रियलिटी चेक कराते हैं, फ्लोर पर कितने रूम्स हैं ये आप चेक कीजिए। रूम नंबर 101, इसके बाद रूम नंबर 102 यानी 2 कमरे, रूम नंबर 03 यानी 3 कमरों तक की इजाज़त है। लेकिन अब आप देखेंगे, एक कमरा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, एक कमरा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पर नज़र आएगा, एक कमरा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। हर फ्लोर पर इसी तरीके का आलम जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, एक कमरा यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर गेस्ट नज़र आएंगे, और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से रूम जो है वो नज़र आएंगे। यानी हर फ्लोर पे आपको 4 से 5 कमरे जो है वो नज़र आएंगे, 5 कमरे। बेसमेंट में भी आपको जो है तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर भी जो है वो कमरे जो है वो आपको नज़र आएंगे, पेंट्री नज़र आएंगी। कि ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है MCD की, दिल्ली सरकार के टूरिज़्म विभाग की जो इनके इजाज़त देता है, फायर डिपार्टमेंट की जो इस तरीके से अगर फायर का इंसिडेंट हो जाए तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फायर की, ये तमाम लोगों की, विभागों की जिम्मेदारी है, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है।
4: तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
5: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगी सारी चीज़।
4: अच्छा, ये बताएं कि एंट्री एक्टिव को लेकर के फायर NOC भी नहीं है?
5: नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एंट्री है या नहीं है।
4: कि अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या MCD इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
5: जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है MCD, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करती है।
0: 21 पीपल डेड, 8 members ऑफ एन एंटायर फैमिली हैव बीन किल्ड। वेल, दीस आरंट जस्ट नंबर्स, these were real people, somebody's mother, somebody's father, somebody's daughter, a loved one, a neighbor, a friend. They aren't just statistics. The Hors Rani tragedy is also something that brings back a horrific sense of deja vu for all reporters who've been covering this. It's also a reminder that perhaps as much as we hope for things to change, things only remain the same. Make no mistake, this is callous criminal negligence, a man-made tragedy. There's a deep sense of frustration and even desperation as we hope for accountability to be fixed, for things to improve.

अक्षय पालीवाल इज सीन ग्रूविंग टू वो लड़की है कहां व्हाइल कैरिंग हिज डॉटर इन अ बेबी कैरियर. द होलसम फादर डॉटर मोमेंट हैज लेफ्ट व्यूअर्स स्माइलिंग विद मेनी कॉलिंग इट द काइंड ऑफ कंटेंट द इंटरनेट नीड्स मोर ऑफ.

0: एक लड़का जिसको 9 to 5 करने के बाद लगता था कि अब उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है और वो नाखुश था। आज वही लड़का 9 to 5 करने के बाद 5 to 11 बाइक टैक्सी चला रहा है, खुद का खाना बना रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है और इसके साथ साथ उसकी PhD की पढ़ाई चालू है और इसके बावजूद वो अब खुश है। अब वो खुश लड़का मैं ही हूँ। अब खुश क्यों हूँ?
1: For Deepak Pandey, the work day doesn't end after office hours. The Ahmedabad professional has gone viral for balancing a full-time job, bike taxi shifts, PhD studies, content creation and daily chores.
0: मैंने PhD में एनरोल किया, उसके बाद मैंने बाइक टैक्सी चलाना शुरू किया, फिर कंटेंट बनाना शुरू किया और आज मैं सारी चीजें लगभग मैनेज कर पा रहा हूँ। तो यार आप लोग भी अपना अगर कोई पैशन है ना स्टार्ट कर सकते हो। जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना टाइम मिलता है बस उसको स्टार्ट करो, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे आपको मजा आएगा। जैसे जैसे आप अपना
1: स्टोरी ऑफ रिलेंटलेस हसल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैज इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑनलाइन विद मेनी प्रेजिंग डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर थ्रू द हार्ड वर्क।
0: अब खुश लड़का मैं ही हूँ। अब खुश क्यों हूँ? क्योंकि लाइफ में पहली बार पहचाना कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। चार लोग क्या कहेंगे या मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझे कुछ नया करने के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी, इस डर से मैंने कभी अपना पोटेंशियल पहचाना ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे पहले मैंने PhD में एनरोल किया, उसके बाद मैंने बाइक टैक्सी चलाना शुरू किया, फिर कंटेंट बनाना शुरू किया और आज मैं सारी चीजें लगभग मैनेज कर पा रहा हूँ।
1: A group of Indian women has captured the internet's attention after confidently walking in a colorful sarees near the Eiffel Tower. Shared by Bengaluru-based Sari Boutique, the video shows the women enjoying a playful ramp walk while proudly showcasing traditional Indian attire. Social media users loved the blend of culture and confidence, calling the moment elegant, joyful, and uniquely Indian.